उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी, ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ये कीता, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ये उपदेश कीता, ये जातां पातां इंसान दियां बनाईयां हैं, सानू सारियां नू बनाण वाला एक परमेश्वर है, आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए, आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ये शब्द गा के रसना पवित्र करें।

क्रोध नाल प्यार करते। हजूर फरमाते झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसी नाल त्रोह करना इनू मिठे लगते ने। हजूर कहते ने ए वाहगुरु इन्हों रख लै इन्हों अवगुणा तो।

रोज अरदास करदा सी, ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोग, सारा थड़ा भरिया हुआ। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे है थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै एक तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जामड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कहन लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, तेनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहते ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आओ भाई, बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना, पातशाह सी कैद होए पए, मेहर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर, अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे। पंच दूत मोह

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं कामी कुत्ता है। आख्या कहने ने जून कोबरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आप बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

देह रा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीह पूजा अते निवाज इना नु एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इना विच फर्क समझदे ने उन्ना दे मना विच ही नफरत रहंदी। सदियां तो हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर

राक्षस, जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक हैं, पहरावे भी वक है, देश भी वक है, और इन चीजों का असर इंसान ते होंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा।

मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचिए दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है, मकसद ते दोनों दा

अज दे नहीं सदियां तो चले आ रहे हैं। क्यों कुछ लोग धर्मी अखवांदे हैं पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदे किसी ते जुलम नहीं करता। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करता। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करते हैं कि ये देखो सच नूं छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़दे मरदे हैं। भाई साहब जी बयान करते हैं चार वारन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचू जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अति अगे भाई साहब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जेड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया विच गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जेड़ा है ये उस तरह ही

धर्म विच रोजे ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है ओदे बारे दसिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा ए उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने ए हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे टाए जांदे रहे भाई गुरुदास।

जेड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे हन। मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए, इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पए, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने

और जिन्हां ने इंसाफ करना, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा, दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण नो उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जेड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा।

चल पई है। ए भुली हुई दुनिया रब नू समझ नहीं सकी, क्योंकि रब दा नाम भूलणा दा थोड़ी है, ओ ते इंसान नू रब वर्गा बना दिंदा।

गुरु साहबा ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुल्मिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई, आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश, अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा

सुरत ना श्रवणन बचन मधोकी है अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो मस्तक नाहे भाग।

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग

जे मालिक तेनू प्रवान करने वास्ते तेनू प्रवान होने वास्ते तेनू प्राप्त करने वास्ते मैं अपने वल वेखा ना मेरे को रूप है ना मेरे को अखां ने ना अखां विच नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके ना मेरे को रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके ना मेरे को जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां बल्कि मेरी तां सुरत दे मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं कुलहीन कह लो ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे जिहदा गुण भी कोई ना होवे ओहदी शोभा भी कादी ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवा तेनू प्रवान किवें होवा तेरे नेड़े किवें होवा कोई चारा नहीं। हां जद यह जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

हुण तू अपना सुभाव वेख। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शांदो होण दा सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शिशों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने तो कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनू ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा दा मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधर ही जावा। पर सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुनाह बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। हुण मेरा सुभाव ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभाव वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्तन।

मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया भगवान कृष्ण महाराजे बन गए द्वारका नगरी दे मालिक बन गए।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उलीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लै के फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोनों ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हैं,

विचार दे रहे हैं। मित्रता नूं वी गुरमत अनुसार लियाउंदे होए भाई साहब फरमान करदे हन कि भगवान कृष्ण सारे संसार नूं की संदेशा दे रहे हैं। कहिंदे ने सुदामा अपनी पत्नी दे कहिण ते चलिया सी

गुरु का दसिया होया नाम याद आउंदा है। ते गुरु का नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, कहते हैं उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हैं वो सारे दे सारे कट्टे जाते हैं। भाई साहब फरमान कर रहे हैं गुरु की सेवा की कथा की महानता। तो गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज का एक शब्द है। ये स्वामी रामानंद

अपने दास दियां सारियां मनोकामना पूरियां कीतियां हैं। गुर पूरा नमस्कारे, प्रभु सबे काज सवारे। सेवक नू परमेश्वर ने किसे किस्म दी थोड़ नहीं रहन दिती। साई फरमाउंदे ने हर अपनी कृपा तारी, प्रभु पूरन पैज सवारी।

जानो कि परमात्मा ने उसके सारे काम सवार दिते। प्रभु ने उस मनुख उत्ते मेहर की निगाह की, लोक परलोक विच उसकी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा

नाम दा खजाना दिवा दिता। उसनू माया दी लालसा नहीं रह जांदी, माया उसदे पिछे पिछे तुरी फिरदी है। मेरे पूरे सतगुरु नू उस वड पागी मनुख वास्ते यही गल चंगी लगती है। साईं फरमाउंदे ने कि उसका भंडारा कैसा है।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना

बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्ह ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़ियां पदार्थां दे नाल न्यो लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन पटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर की कोई तैनू चिंता ही नहीं। ये शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके

दुर्लभ देहे पाई वड भागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी होन जीवन कौन काम। हजूर कहंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे तावी कम कर जांदा, दस काज सवार जांदा। तू संसार ते आके जे सिमरन नहीं कीता, पदार्थ छक ले चंगे वस्त्र पहन ले, सिमरन नहीं कीता ता फिर नरु मरे नर काम ना आवे, फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी तेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे आओ करे, तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरिया अखां वेख रहियां हन, ए ज्यों सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो बखान। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। ए तां जो कुछ तेरिया अखां वेख रहियां हन, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए, ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे, तू परदेस विच आए, ए जगत एक सराय है, जो मनुख आया है सराय दे विच बैठ, ते सराय नू मुसाफर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है, उनू कोई सियाणा नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ये कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफर खाना है। राती आउंदा है मुसाफर, प्रभाती तुर जांदा है, ते जे उसनू जफा पा के बह जावे भाई ये मेरा है, ता फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहंदे हन, मेरे मन परदेसी वे आओ करे, अपने निज घर विच आ भाई, अमृत वेले उठ के इशनान करिए, ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोने दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन, कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े, प्यार दे नाल सुने, ये गुरु का दर्शन है।

दस बाल तन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माझ दी वार विच आप बख्शिश करदे हन कि 10 साल बचपन दे बीत जांदे हन, 20 रमण, 54 हो गया, हुण घर दे सामान इकट्ठे करन विच लग गया, 30 का सुंदर कहावे, 40 सी पर होए 85, 40 ते 50 साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहेगुरु ने अमोलक स्वास बख्शे सन। हुण 50 साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, 17 का मत

एतन होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गौर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी।

चले चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिखिनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो

एक गल कह के समाप्ति करा। कहंदे ने परंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु तेग बहादुर साहब जी दा आसीस एक कपड़े विच लपेट के जदों श्री अनंदपुर साहिब पहुंचे है, गुरु कलगीधर पातशाह 9 साल दे छोटे जे बच्चे, सारियां संगतां, माता गुजरी जी जिन्ना 26 साल भोरे विच बैठ के गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा साथ दिता, ओ माता जदों वेख्या अपने सरताज दा आसीस खून नाल लथपथ होया होया, माता वेख के सहारण ना कर सकी, गंगा जमुना वह तुरिया, ओ मेरा मालिक वैराग रूप गुरु तेग बहादुर जिन्हां दियां अखां विचों कदी नीर बंद ही नहीं होया, इतना वैराग जिथे पढ़ो वैराग ही वैराग, मेरे पातशाह पुछदे ने रंगरेटे फिर की होया, कहन लगा जी तड़ पिया सी, औरंगजेब ने ऐलानिया किया सी, कोई होवे गुरु का सिख जेड़ा तड़ चुक लवे। पातशाह पुछदे ने उत्थे कोई सिख नहीं सी, 250 साल सिखी दा प्रचार हुंदिया उत्थे कोई सिख नहीं सी, पातशाह सिख ते है सन पर डरदे सी, फिर पहचान भी कोई नहीं सी, कौन खड़ा है। पातशाह ने आख्या खड़े सन, हां खड़े सन, पर छाती ते हाथ तरके कोई नहीं सी कहंदा मैं गुरु का सिख हां। उथे गुरु कलगीधर जी ने आख्या फिर मैं ऐसा सिंह सजावांगा, ओ तां दुहाई पाके आखेगा मैं सिख नहीं पर लोकां ने आखना तू सिख है। तेरी दस्तार दसदी पई है तू सिख है, तेरा कड़ा दस रहा है तू सिख है, भावे ओ दुनिया नू धोखे विच रखण लई कह देवे मैं सिख नहीं पर लोकां ने आखड़ा तेरा दाड़ा तेरे केस तेरी दस्तार तेरी कृपान दसदी पई है तू सिख है, मैं ऐसा सिंह सजावांगा जेड़ा छुप नहीं सकेगा। उथे पातशाह ने ऐलान किया और फिर तुहाडा रूप दिता ए गुरु के सिखां दा, जो प्रगट भया खालसा पर देण गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी, कितनी प्यारी बाणी मेरे पातशाह ने उच्चारण कीती है।

कबहू न डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्या कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे, महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसटां, इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

कार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

खाई बालक है। दर्शन पाके दौलतां दाई तन हो गई। सात सगत बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायों।

तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लेता। मैं ता कालू ने समा लिख लिया और जदों सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं ता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैं ता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका

पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन